0: Di tengah citra Varanasi yang dikenal dengan suasana religius dan tenang, restoran ini justru menawarkan sensasi adrenalin yang memicu beragam reaksi publik. Popularitas restoran ini menuai kontroversi, memicu perdebatan nasional mengenai etika pemasaran berbasis ketakutan. Meski demikian, pihak pengelola menegaskan konsep ini hanyalah hiburan semata.
1: ऐसे देखिए आजकल कंपटीशन भी है मार्केट में और बहुत सारी चीजें हैं तो हमारा कुछ ऐसे था कि कुछ अलग करना कस्टमर एक नॉर्मल मतलब हर रेस्टोरेंट हर जगह लोग जा रहे हैं खा रहे हैं तो एक नॉर्मल तरीके से होता है नॉर्मल वेटर आना सर्व करना तो फिर हम लोग सोचे कुछ यूनिक कुछ कॉन्सेप्ट किया जाए कुछ यूनिक थ्रिल से रिलेटेड कुछ किया जाए तो हम लोग ने कस्टमर का अटेंशन पाने के लिए और कुछ उनको थ्रिल एडवेंचर देने के लिए तो फिर हमने ऐसा कुछ सोचा
0: मेनू यंग डिसाजिकन तथा menghadirkan hidangan khas India Utara dan Chinese food termasuk pilihan vegetarian serta layanan hingga larut malam. Namun, setiap sajian dibalut dengan pengalaman penuh kejutan yang memacu adrenalin. Meski menuai pro dan kontra, restoran ini tetap diminati terutama oleh kalangan muda yang mencari sensasi baru.
2: Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Diana Valencia pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.